9,4,5,7,1,5 और ख-1,000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1,6,7,2,9,4,5,7,1,5 और 1,000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके

शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें,
दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं।
ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है।
खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है, और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना।
साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी।
प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है।

जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी

ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं।
ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है।
कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है।
निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव।
मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है।
अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार।

रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा।

में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी प्रस्तुत है। आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBSN नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBSN नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है।
बच्चों में बुखार, बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत।
मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है।
यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है।
निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और

का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट

किया गया था जिसमें बोनेटोसार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA Sun Noodle Surat Anmen Hot and Sour Flavor Premium Japanese Noodles और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटोसार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन।
दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।
अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है।
माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5
715 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है।
बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।
छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी।
प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO

एंड हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।

तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है।
यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है।
पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें।
अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं।
उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें।
गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना

देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें।

अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9,
45715 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है।
दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें।
अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9
45715 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है।
दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5
और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?

अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों

की बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं, तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं, तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 715
और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है, कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है, कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5,
715 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें।
यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण।
टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का

एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने

और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है।
अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी।
प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है।
माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है।
अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी।
प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBS एंड नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 सात 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBS एंड नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है।
प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते।
जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें।
यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल

या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी

कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है।
निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है।
तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयरिंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से
WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं, तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है।
इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें
और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से
WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है।
उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू

नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत

सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है।
नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते।
जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें।
यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के

मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व

स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां साबुत अनाज दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां साबुत अनाज दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है।
निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं।
ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है, और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत।

अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षण

के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें।
अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है।
प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है।
इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है।
बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।
छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6,
9792945715 और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1672945715 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं।
समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन।
दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5

कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित

हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो
या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना।
साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी।
प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है।
खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है, और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है।
बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए, तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे, तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।
छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच

और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है, और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है।
कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण।
संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से
WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है।
इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से
WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBS एंड नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBS एंड नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।
अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है।
माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां

से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA

सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।
अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है।
माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA Sun Noodle Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium Japanese Noodles और Soup Base को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, Sura Tanmen Hot and Sour Flavor रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं,
नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीएस एंड नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीएस एंड नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है।
नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते।
जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर

प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी

आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है।
यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है।
पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयरिंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें।
अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।
अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है।
माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है।
अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयरिंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया

गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या

फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो
या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।
छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।
अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक।
लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं, तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।
छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?

और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है।

क्योंकि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें,
दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5
और ख 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है, कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं, तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है, कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है।
कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का

एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने

और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है।
अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी।
प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक।
DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBS सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है।
माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है।
अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं।
ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है।
कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है।
नियमित पोषण, संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण, संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है।
निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है।

कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है।

यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है।
दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।
छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।
अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है।
खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं।
यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से
WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है।
उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह

टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें।

दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है।
नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट यूएसपी 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों एनडीसी 1-6-7-2-9-4-5-7-1-5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी एचएनयू इंक। डीबीए सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण
संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है।
हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें।
यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है।

आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है।
निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना।
तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है, और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहे या बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे या दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं।
ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास, ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का।
कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है।

स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने

से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण।
संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, या दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है, और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA Sun Noodles Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium Japanese Noodles और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है, और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें
और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से
WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं।
कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU Inc. DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं।
यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण,
सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैकरल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना।
साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1 6 7 2 9 4 5 7 1 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स, सूरत आनमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरत तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार

के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर रामेन नूडल के पैकेट में सोबा सॉस का पैकेट पैक किया गया था, जिसमें बोनेटो सार्डिन और मैक्रल मछली शामिल है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी एकॉर्ड हेल्थ केयर इंक। लेवोथायरोक्सिन सोडियम टैबलेट USP 200 माइक्रोग्राम 0.2 मिलीग्राम को वापस मंगा रही है, जो कि 90 गोलियों वाली बोतलों NDC 1, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 1, 5 और 1000 गोलियों वाली बोतलों में उपलब्ध है। कारण, कम असरदार दवा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी HNU इंक। DBA सन नूडल्स सूरा तानमेन हॉट एंड सॉर फ्लेवर प्रीमियम जापानी नूडल्स और सूप बेस को वापस मंगा रही है। खुदरा पैकेज का शुद्ध वजन 15.4 औंस है। उत्पाद रामेन है। कारण, सूरा तानमेन हॉट